0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो
3: स्टूडियो टाइम
0: 7 AM बिहान को 7 बजे
4: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलह दुकू नगर पालिका 5 सोलह कुंभ।

0: sekarang ada pada kedua ini.
1: Pada diksi juga, namaskar.
2: Namaskar, Santosi. Kita jalan tiada. Apa tidak?
1: Hey, kibun orang ada diksi juga. Kalau turma, jawabnya sih boleh boleh lah. Turbi kasma, khobar ayu. Perbahabit mula turbi kena jansuh condition. Kita ni juta arufu bansa. Usle thoughtful kali berita tunggai di nuporyo boleh lah. Nibidan di kosa. Tapi nyaiis komiti kosa dasi pun boleh kali. Lina aku mata.
2: No, testi bisa na ambil kiri thoughtful kali. जबरदस्ती कारण जस्ता आरोप मा छलफल गर्न निलापत्र गर्न हामीले मिल्दैन त्यो हाम्रो क्षेत्र अधिकार भित्रै पर्दैन क्षेत्र अधिकार मुचेर काम गरियो भने त भोलि हामी नै पर्छौ है फेरि
1: तुलसीमीको कुरा

0: মুখপত্র রকম তোমারই সাধনক নম্বর একিম করে সম্বন্ধে সূচনা আদরণীয় সেবাগ্রাহী মহানুভাবহরু তপাইলে আপনো সওয়ারি সাধনক বার্ষিক রূপমা বুঝাউনু পর্ণে সওয়ারি কর নবীকরণ বস্তু লগায়ত অন্য কর সম্বন্ধে বিতরণ হেনকা লাগে সম্বন্ধিত যাতায়াত কার্যালয়মা গেলে কর প্রিন্ট মান্য ব্যাঙ্ক ভোচর গর্ন অগ্রি সওয়ারি কর তথা বস্তু একিম গর্ন তথা কর বুঝায় পছি প্রাপ্ত হুনে বিনা আপনি বুঝায় করকো রকম আপনি সওয়ারি নম্বর একিম গর্ন হুন এসে সূচনা মারফত অনুরোধ গর্নছ
1: কোশী প্রদেশ সরকার আন্তরিক মামলা তথা কানুন মন্ত্রণালয় বিরাটনগর
2: मौसम सम्बन्धी सही सूचना प्राप्त गरौ सुरक्षित भविष्य निर्माण गरौ मौसम तथा जलवायु सम्बन्धी सूचना लिने र दिने गरौ मौसम पूर्वानुमानको जानकारी नियमित रूपमा लिने गरौ प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरणमा सचेत गरौ जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन सामूहिक प्रयास गरौ वन संरक्षण वृक्षारोपणमा सक्रिय सहभागिता गुमाउ ऊर्जा बचत र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढ़ाऊ बाथरूम प्रदूषण नियन्त्रणमा जिम्मेवार बनाऊ बाथरूम संरक्षण गरौ जीवन रक्षा गरौ
3: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
4: बालबालिकालाई लागू औषध दुरूपयोग गर्दछ
5: लागू औषध सामाजिक अपराध हो कोही कसैले प्रयोग नगरौं बालबालिकालाई लागू औषधको प्रयोगबाट टाढा राख्नु बालबालिकाको सुन्दरतामा ध्यान दिउ लागू औषधबाट हुने हानि र कानूनी परिणामको बारेमा जानकारी दिउ बालबालिकासँग नियमित संवाद गर्ने गरौं बालबालिकालाई घरमा माया र समय दिने गरौं विद्यालयमा जीवन उपयोगी शिक्षा दिने गरौं बालबालिकाको सकारात्मक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरौं
1: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा सारी सन्देश
0: सवारी साधनको इन्जिन र तेजस रूपकरण सम्बन्धी सूचना आदरणीय सेवाग्राही महानुभावहरु तपाईले आफ्नो सवारी साधन नयाँ खरिद गर्दा नामसारी गर्दा सवारी साधनको इन्जिन र चेसिसको अवस्था रुजु वा अन्य कुनै कैफियत भए नभएको रुजु गरेर मात्र खरिद बिक्री गर्नका लागि यस्तै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ
1: उत्तर प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

0: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना अदालत सेवा ग्रही महानुभाव यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रबंधन सेवा प्राप्ति को सहजीकरण को नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकूने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राख्ने अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कसई को प्रलोभन नगरी आपको सेवा लिना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कने गुनासो आई में गुनासो सुनने अधिकार कार्यालय प्रमुख सोझो संपर्क राख्न सकूने
1: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराटनगर
2: आदरणीय श्रोतावृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सुन्दरफम सुन्दरफममा अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न नेपाली पद गीतहरू।

0: も参考にしてください。
1: सुरुङ जुन देशी जोड़ने सड़क निर्माण कार्य हाल सुरुङ क्षेत्र संचालन भइरहेको छ। निर्माण कार्य क्रम में माथिल्लो सुरुङ ढुंगा खस्ने संभावना रहेकाले तल्लो फेरा साधन क्षेत्र में नस्ताद काट्न गाई बस्ती चलाउन तथा आवत जावत गर्ने पूर्ण स्थानीय वासी तथा सर्वसाधारणहरूलाई सावधानी अपनाउन हुन यसै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ। कृपया जोखिमयुक्त क्षेत्र में अनावश्यक रूप में नजानुहोस् र आफ्ना बाल बालिका तथा चौपायालाई समेत सुरक्षित राख्नुहोस्। सुरुङ जुन देशी उपभोक्ता समिति सुरु खुम्बु
2: Oh, my God.

0: మరణి కే
1: ఇరుతో రగతే రగతు శ్యామతో తీస్తూ ఎవరని
0: తగ్గినా బిబ్రా క్రాస్ బాట బాట కాటు పోరే క్రాస్ బీచ్ బాట బాట కాటకు
1: ఇరుతో అమ్మ ఎమ్ముతున్నాను మోటర్ సైకిల్ చలాని బాచు బాట కాట్ని మంచి మోర్లు కి బాచు కేమి చేయగాను సైనా
0: त्यही
1: भएको बाटो काट्दा जेब्रा क्रसबाट मात्रै बाटो काटौ भनेको
2: हो बाटो काट्दा जेब्रा क्रसबाट काटौ जेब्रा क्रसमा अनिवार्य रूपमा सवारी साधन रोकौं र पैदल यात्रीलाई बाटो काट्न दिउँ
3: सवारी साधन चलाउँदा मोबाइल प्रयोग नगरौं बाल बालिकालाई सड़क नियम सिकाऊ र सुरक्षित स्थानमा हिँड्न प्रेरित गरौं
2: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड
1: खै जन्मदाता दिनुहोस् त
0: जन्मदाता गरेको छैन नि म्याडम
1: जन्मदाता नभए त विद्यालय भर्न हुँदैन नि
0: मलाई त थाहा नै थिएन म्याडम
1: बाल बालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्न सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न नागरिकता राष्ट्रिय परिचय पत्र र राहदानी बनाउन ब्याङ्कमा खाता खोल्न अनि राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा पाउन जन्मदाता अनिवार्य हुन्छ
3: त्यति मात्रै हो र दाई जन्मेको 35 दिनभित्र स्थायी ठेगाना वा जन्मेको ठाउँको वडा कार्यालयमा जन्म दर्ता गराउनुपर्छ
2: जन्म र मृत्यु दर्ता परिवारको मुख्य व्यक्ति वा 18 वर्ष उमेर पुगेका घरको सदस्यले वडा कार्यालयमा गराउनुपर्छ
3: विवाहको सूचना पति र पत्नी दुवैजनाले दिनुपर्छ सम्बन्ध विच्छेदको सूचना अदालतको निर्णय सहित पति वा पत्नीले दिन सक्छन्
2: जन्म मृत्यु बसाई सराई विवाह एवं सम्बन्ध विच्छेदका घटना बेलैमा दर्ता गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो
3: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड

0: সভাসমূহত দৰকাৰ থকা এই বিশ্বাস দৰ্কা প্ৰতিনিধি তথা নবীকৰণ গণেশ সম্বন্ধী সূচনা
1: যাতায়াত ব্যৱস্থা কাৰ্যালয়মা দৰ্কা ভাল স্থানীয় তহমা হস্তান্তৰণ ভূমিকা ই ৰিক্সা পুনৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা কাৰ্যালয়মা দৰ্কা গৰ্দা এই কাৰ্যালয়ে জাৰি কৰ সকল বিলভূত ভূমিমা চৌকো আধাৰমা স্থানীয় তহবাট সুৰুৱা ফিৰ্তা গৰিকো নিশা সমেত ৰাখি সেই দৰ্কা নম্বৰ কায়ম হুনে গৰী অপলে খড়া গৰিছ यदि यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले जारी गरेको सकल बिलभूत नभएको तर स्थानीय तहले जारी गरेको सवारी दर्ता प्रमाणपत्र बिलभूतमा यातायात व्यवस्था कार्यालयले जारी गरेको सवारी दर्ता नम्बर समेत उल्लेख भएको खण्डमा स्थानीय तहले जारी गरेको सकल सवारी दर्ता प्रमाणपत्र राखी प्राविधिकको नम्बर कायम गरी बिलभूतको प्रतिलिपि दिनेछ। त्यसै गरी यदि यातायात कार्यालयले दिएको जाँच पास प्रमाणपत्रको सकल पेश गरेमा पनि सोही सकल पत्रको आधारमा यातायात कार्यालयले जारी गरेको दर्ता नम्बर कायम गरी सवारी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि जारी गरिनेछ। सोही स्थानीय तहमा दर्ता भएका वा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भए स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका यी रिक्साहरूको सवारी दर्ता अभिलेख किताब स्थानीय तहमा जेएनजीको आन्दोलनको क्रममा जली नष्ट भएको अवस्थामा स्थानीय तहमा दर्ता भएका एवं कर चुक्ता गरेको प्रमाणको आधारमा सकल सवारी दर्ता प्रमाणपत्र बिलभूत समेत राखी सरुवा दर्ता सरह दर्ता गरिनेछ। सेवाग्राहीले नागरिकताको फोटोकपी दुई प्रति हालसालै खिचिएको फोटो सवारी दर्ता प्रमाणपत्रको फोटोकपी सवारी साधनको इन्जिन नम्बर र चेसिस नम्बर देखिने गरेको फोटो सवारी साधनको पूर्ण भाग देखिने गरीको फोटो संलग्न राख्नु पर्नेछ। यदि स्थानीय तहमा सवारी कर तथा नवीकरण समेत गरिएको भएमा उक्त शीर्षकमा थप कर लाग्ने छैन।

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड की मोटर साइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन क्षेत्र। हुंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रवृत्ति उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ भरपर्दो
2: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लॉन्च भइरहेको
2: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यवसाय प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी। ओखलढुंगा र खोटाङको डिक्चेल बजारबाटै फाइनान्स को सुविधा सहित हुंडाका सबै मोडल का मोटरसाइकल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनु का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ।
2: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गोरुमारे भिजाङ
1: संपर्क नंबर 0375902222 9852188002222 98 42 80300।

वर्ल्ड कॉलेज शांत तथा अनुशासित शैक्षिक वातावरण उत्कृष्ट बौद्धिक पूर्वाधार दक्ष शिक्षक शिक्षिका आईएसओ सर्टिफाइड अतिरिक्त क्रियाकलाप साथ ही यह कॉलेज ने विद्यार्थी में रहकर अंतर्निहित प्रतिभा पहचान करी उजागर करना मदद करते आयो शुल्क गुणस्तरीय शिक्षा मनासुन वर्ल्ड कॉलेज साबुन सूचीवादी संपर्क नंबर 9803623382 9803623387।

0: FM 101.2 MHz उज्ज्वल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Soundcheck. City FM. The studio time.
2: It's 5
0: PM. Start the call 5 minutes. Time check को साथ में New Star Digital Color Lab तथा Dwaramai Offset Press. सोलु दुपुर नगरपालिका 5 सोलु कुंभ

0: शुल्क गुणस्तरीय शिक्षा मनासी वर्ल्ड कलेज साबुन सुसीवादी संपर्क नंबर 9813-62382 9813-62387।
1: मौसम संबंधी सही सूचना प्राप्त करौं, सुरक्षित भविष्य निर्माण करौं, मौसम तथा जलवायु संबंधी सूचना नियमित रूपले करौं, मौसम पूर्वानुमान की जानकारी नियमित रूपमा लिने करौं, प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरण सचेत बनाऊ, जलवायु परिवर्तन का असर घटाउन सामूहिक प्रयास करौं, वन संरक्षण वृक्षारोपण में सक्रिय सहभागिता जनाऊ, ऊर्जा बचत र स्वच्छ ऊर्जा को प्रयोग बढ़ाऊ, वातावरण प्रदूषण नियंत्रण में जिम्मेवार बनाऊ, वातावरण संरक्षण करौं, जीवन रक्षा करौं।
2: आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी संदेश।
1: सूचना सूचना सूचना निःशुल्क आवासीय छाता व्यक्ति को सूचना। काठमांडू में संचालित एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी विद्यालय द स्काई मार्केट स्कूल में कक्षा एक देखि एसईसम निःशुल्क आवासीय छात्रवृत्ति में अध्ययन कराने अर्जुन राई बन बोर्चा फाउंडेशन स्पोन्सरशिप प्रदान करने कक्षा एक में भर्ना को निमित्त प्रतिस्पर्धा में भाग लिने इच्छुक खोटांग जिला भित्र का अध्ययनरत विपन्न उत्पीड़ित आदिवासी जनजाति छात्र छात्र आवेदन को सूचना मार्फत संपूर्ण जानकारी कराई आवेदन दिने छनौट प्रक्रिया में भाग लिने अंतिम मिति यही दिशा प्रतिशत छप जानकारी का संपर्क नंबर 9851-0753-85 साथ ही संबंधित विद्यालय पालिका का वहां अर्जुन राय डोंगोछा फाउंडेशन को फेसबुक पेज में व्यवस्थित होने अर्जुन राय डोंगोछा फाउंडेशन खामखुआ खोटाई।
3: जापानीज भाषा पढ़कर जापान छो कि दीदी गांव में जापानीज भाषा पढ़ाई न होने रहे
4: खोजते हिड़े संसार भेटिंग बुरू कुन ठाव में राम्रो पढ़ाई होने चाहिए मैं बताइदिंदा हई
3: मेरे तनाव चाहिए यही हो जापान जाना कुन इंस्टीट्यूट में राम्रो पढ़ाई होनी के प्रोसेस कर तनाव में छो हो
4: अब चिंता नमान ओरियन बिजनेस ग्लोबल इंस्टीट्यूट ट्रावल चीफ में जापानीज भाषा पढ़ने अनि जापान जाने
3: होना ये इंस्टीट्यूट में क्या पढ़ने अरु छैन त पढ्ने ठाउँ
4: ओरियन बिजनेस ग्लोबल इंस्टीट्यूट में अरुको भन्दा छुट्टी विशेषता छ यहाँ जापानबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका तथा जापानी शिक्षकहरुबाट भाषा कक्षा पढ़ाने को साथ ही साप्ताहिक नियमित 30 कक्षा छुट्टी में पनि एफेक्ट गरिने र बिना झंझट जापान जान प्रशिक्षण समेत गरिन्छ त्यसका साथ ही कम मार्क्स ल्याएका वा कम सिपी ल्याएका ब्याकलागले पास भएकाहरुले पनि जापानमा पढ्न जान अप्लाई गर्ने र जापानको टोकियो ओसाका नागोया फुकुओका लगायतका शहरमा जाने सुविधा पनि उपलब्ध छ
3: सबै कुराको सुविधा त थाहा भयो दिदी कक्षा संचालन कति छिटो हुने रहेछ
4: सुन कान्छा यस इन्स्टिच्युटमा जापानीज भाषा कक्षा बिहान 6 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म नियमित भइरहेका छन् त्यसैले आफू चाहिँ सुरक्षित गरिहाले कान्छा
3: ल दिदी म त हिँडे ओरियन बिजनेस ग्लोबल इन्स्टिच्युटमा तपाईँहरू पनि आउनुहोस् है
5: हजुर सबैको विश्वासी र भरपर्दो जापानीज भाषा पढ़ाउने इन्स्टिच्युट ओरियन बिजनेस ग्लोबल इन्स्टिच्युट चावेल केएल टावर छैटौं तला काठमाडौँ सम्पर्क 9855-17979 र 01-592-26-16 वेबसाइट www.obgi.edu.np ओरियन बिजनेस ग्लोबल इंस्टीट्यूट ओबीजीआई एजुकेशन कंसल्टेंसी नेपाल चारों चुच्चेपाटी काठमाडौं
6: एसई पछि कक्षा 11 कहाँ पढ्ने होला
7: म पनि त्यही सोच्दै छु अब राम्रो कलेजमा पढ्न पाए हुने
8: ए नानी बाबु के सल्लाह गर्दैछौ तिमीहरू
6: अंकल एसई त सकियो अब कक्षा 11 कहाँ पढ्ने हो भनेर कुरा गरिरहेका हौ
8: त्यसो भए मेरो कुरा सुन तिमीहरू विनायक सिद्ध कलेज चारुल काठमाडौँ जाऊ
7: किन र अंकल त्यो राम्रो कलेज हो र
8: राम्रो मात्र होइन उत्कृष्ट कलेज हो त्यहाँ पढाइसँगै खेलकुद कला नृत्य गायन र व्यक्तित्व विकासलाई पनि उत्तिकै महत्व दिन्छ त्यति मात्र होइन अनुभवी र दक्ष शिक्षक शिक्षिका स्मार्ट क्लासरूम अत्याधुनिक विज्ञान तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला अनुशासित वातावरण होस्टल सुविधा बस सुविधा उत्कृष्ट भौतिक पूर्वाधार पनि
7: अनि पढाइ चाहिँ के चाहिँ हुँदो रहेछ
8: कक्षा 11 मा साइन्स म्यानेजमेन्ट ह्युमेनिटिज एजुकेशन र ल विषयका पढाइ हुन्छन् अनि प्रत्येक वर्ष एमबीबीएस इन्जिनियरिङ बीएससी नर्सिङ बीए एलएलबी बीएचएम बीबीए बीआईटी बीएससी सीएसआईटी मा पूर्ण तथा आंशिक छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्न सफल पनि भएका छन्
6: वाह पढाइ पनि राम्रो प्रतिभालाई पनि अवसर
8: नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका खेलाडी प्रीति राई अमिषा कार्की आयुष घलान आदिल हमिद डान्सर सुरेन्द्र राई सरस्वती धिमाल जसले विश्व रेकर्ड राखेका छन् डान्सर सुजन मार्फा नेशनल रेफ्री विष्णु गुरुङ फिफा रेफ्री हरिश कार्की एन्फा रेफ्री संगीता सुनवार जस्ता सफल व्यक्तित्व यहीका विद्यार्थी हुन्
6: लोकेशन कहाँ हो अङ्कल
8: चाबेल चोकबाट 100 मिटर मात्रै भित्र
7: त्यसो भए त म त यही जाने भए
6: म पनि विनायक सिद्ध कलेजमै पढ्छु
8: कक्षा 11 को भर्ना खुलिसकेको छ आजै सम्पर्क गर्नुहोस् फोन नम्बर 01-4549-512 01-4582-768 विनायक सिद्ध कलेज पढाइ मात्र प्रतिभा र भविष्य बनाउने कलेज
9: नमस्कार सेनसेनेका दिदी नमस्कार नमस्कार बुझ्नुको भएपछि स्वास्थ्य चौकी गएर जाँच गराइरहेकी त छौ नि
3: स्वास्थ्य चौकी त म लगिहाल्छु नि दिदी उनले गाह्रो माने पनि लान्छु नि
9: कस्तो राम्रो यस्तो भएपछि सुख शान्तिले घर खोज्दै आइहाल्छ नि स्वास्थ्य चौकीमा हामीलाई गर्भवतीले दूध फलफूल साग सब्जी अण्डा मासु खानु

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो
3: Studio time.
0: It's 7 p.m. Start for 7
4: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतु नगर पालिका 500 गुम्बू

0: सोलु एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: टाइम
2: को साथ में तथा बड़ा माई अफसेट प्रेस सोलू दुतुन नगर पालिक 5 सोलू कुम्बू।

0: 사요 아주 솔루 FM 솔루 FM 101.2 메가헤르츠 우주한 더비쉐코 라기 한국 아비안
1: 당신 솔루 FM 스튜디오 장악
2: It's 9 p.m. रात को 9 बजे. Time check को साथ में New Star Digital Color Map तथा Dwaramai Offset Press. नगरपालिका पांच सोलु कुम्बू.
3: आदरणीय श्रोताबिन तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सोलु एफएम. सोलु एफएम मा अब सुन्न सक्नुहुन्छ नेपाली सदाबहार गीतहरू.

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: सड़क प्रयोग गर्दा ध्यान दिउँ, सड़क सीमा अतिक्रमण नगरौ, सड़क सीमा में अस्थायी एवं स्थायी संरचना निर्माण नगरौ, सड़क को नाली थल तथा पानी निकास बन्द हुन नदिउँ, सवारी चलाउँदा लेन अनुसार पालना गरौं र गरौं, सवारी चलाउँदा ट्राफिक नियमको पालना गरौं, सवारी साधनमा झुन्डिएर वा छतमा बसेर यात्रा नगरौं, सड़कको क्षमता भन्दा बढ़ी भाग प्रयोग नगरौं, जेब्रा क्रसिङबाट माथि बाटो काट्ने गरौं, सड़कको तत्काल मर्मतमार गर्ने गरौं, यात्राको क्रममा कुनै समस्या भए नजिकको प्रहरीलाई खबर गरौं।
2: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
3: आज मैं

अच्छा की न माने ये सला चाहे उनके नजीक जाऊं उन संग माया लाऊं उनके नजीक जाऊं उन संग माया लाऊं।

जो बादल जो पहाड़ ये फूल बंद सुंदर से जो खोला जो झरना ये पंछी बंद चंचल से जो बादल जो पहाड़ ये फूल बंद सुंदर से जो खोला जो झरना ये पंछी बंद चंचल से।

0: जीवन बनी तुम हो मित्रा चाहे खुद उजालो कई हो मेरी सुनी जुल की रानी लाए
1: आ जमाना उड़े रवा छा

0: say my allowance. Say me to be down. Say me my allowance. Hey! Say me to be down. Say me my allowance. Do you want to be down? Say me to be down.
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड की मोटर साइकिल तथा स्कूटर अब उखड़ हुंडा को मिलन सूचना
2: हुंडा का विशेषता
3: जापानीज उच्च प्रवृि उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
3: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ र भर पर्दो
3: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
2: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
3: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यवसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
2: हाम्रा सेवाहरू
3: उखलढुङ्गा र खोटाङको दिक्चल बजारबाटै फाइनान्स को सुविधा सहित हुंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकल तथा स्कूटरहरू कम्पनी के मूल्य में पाइने
2: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाउनु का साथै सर्भिसिङ सेवा
3: एक्सचेन्ज को सुविधा सहित मोटरसाइकल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्भिस सेवा निशुल्क दिइने
2: अनलाइन बाट बुकिङ गरी भुक्तान गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
3: उखलढुङ्गा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्भिस ट्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारी भुजाङ उखलढुङ्गा
2: सम्पर्क नम्बर 037590222 9852988002 र 9842880300

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना अदालत सेवा ग्रही महानुभाव यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रबंधन सेवा प्राप्ति को सहजीकरण को नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकूने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राख अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कसई को प्रलोभन नगरी आपको सेवा लीन हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कई गुनासो आईमा अधिकार कार्यालय प्रमुख सीधे संपर्क राख सकूने
2: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराटनगर।